0: flops.
1: यजमानस्य शिवगोत्रोद्भवस्य मृगनक्षत्रेः अटङ्गापटारिजातस्य पेरन्नघटियो
2: सुमति सुमति
1: सुमति नामदेयस् सिङ्गारवेलन् लव्वस्य वरुङ्गाल वैफस्य देवसेना समेत सुब्रह्मण्य स्वामिने अष्टोत्र नमः पूजां च करिष्ये अय्यय्यो पोरिये पोरिये
3: अरे वो रंगा श्रीलंगा कोपर तेंगा